पयो सत्संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो ए वस्त तुझे न जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाई मैनू जोग कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया पौड़ी तिथे तू सम्राट जिथे कोए नाहे उथे तेरी रख अग्नि उधर माहे सुन कह जम कहे दूत ना तेरे छड़ जाहे

दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिस मह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार तिन संतन कौ बंदन सिर चरणन परतार श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार तिन संतन कौ बंदन सिर चरणन परतार एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न बिना

कैसी आरती होए पवखंडनां तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन हह तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोहि सहस पद बिमल नानेक पद गंध बिन सहस तब गंधे विचलत मोहि सब मह जोत जोत है सोए तिस द चानण सब मह चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत पहावै सुआरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आहि प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंग कौ होए जाते तेरा नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परे मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर दंडौत पुन वड्डा हे रहाउ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हों मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चलह चुभ दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलहो हरलाहा गै बसन सोहेला औद कट दिन सुरैनारे मन गुरमिल काज सुवारे रहा एहो संसार बेकार संसे में है तरे ब्रह्म ज्ञानी जिसा है जगाए पिया वाय हो रस अकथ कथा तिन जानी जा कौ आए सोई बिहज हो हर गुरते मन है बसेरा निज घर महल पाव हो सुख सहजे बहर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगा मौका कर।

शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी।

काहू ल पाहन पोतरयो सिर काहू ल लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तहयो कुर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तहयो कुर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबीर बात बेनती चौ पई हमरी करो हाथ दैर इच्छा पूर्ण हो चित्त की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट बतम काबू हो आप हाथ दैम बचावो सुखी बसै मोरो परवार सेवक सिख सब करतारा मोर इच्छा करदा करिया सब बैरन को आसंगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई और न त्याऊं जो बरचा हो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे अबरिया है मरण काल का त्रासन वरिया है ओ जो सदा हमारी पछाओ श्री अस तो जो करे हो रक्षा राख लिहो मोह राखण हारी साहिब सन सहाय प्यारी दीन बंद दुष्टन के हंता उत्तम हो पुरी चातुर दसकंता काल पाए ब्रह्मा बमतरंग काल पाए शिव जू अवतरंग काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का की आत्मासा जमन काल जोगी सब की ओ वेदराज ब्रह्मा जूती ओ जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार गाता है हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैतो जचन उपजायो आदंती कै अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार ते सिखो हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुरु सुख दियो सतरन को पाल मोहबत कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाण तो चीटी ते कुंचर असूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाण घड़ घड़ की पढ़ पढ़ की जाने जब कर करा कर तारा प्रजा धरत देह पारा जब या कर कर तो कब हो तुम तो मैं मिल देह तर सब हो जीती बदन श्रेष्ठ सब तहराया पापनी बोझ उचारा

0: क्या टिका क्या था गुमहला पहला
1: लख नीतियां चंगियाईयां लख गुना प्रमाण लख तप उपर तीर्थां सहज जोग विवान लख सूरत संग्राम।

लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए।